0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

छोटी मोटी बात है ना। वो परिवर्तन आप ही कर लो, कहना नहीं पड़े। समझदार विश्व।

0: ശിശുവാക്കോ പനാന്നെ വാലിയോ പാപ്താ
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: See.

cosa, Teo. Easy practice. Soy a me. Ese presente.

estetica. A pias par attention kichwana chahiye. Kyunki prakriti apne bin bin rang dikhane shuru kar diye. Janwar kya kya ho raha hai wo aap sab zyada jante aise मंदबुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी है तो अभी ये प्रैक्टिस करो. Sick.

ब्रह्मा मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में हूं। इस मास्टर शक्तिमान

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पुरुषोत्तम संगम योगी

Christ.

Didn't it?

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा यही चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मना नहीं होते, मणि होते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Essene, goodbye.

to je majka.

Some

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

नंबर 4 हो जाते हैं।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दिल में झंडा तो लहरा लिया और कमरे का झंडा भी लहरा लिया जगह जगह पर। अभी पार्थक्यता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराना ही है।
2: शान में ना

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: That's it.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: But so

जो बच्चे

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: लेकिन

Gente.

bien.

Save.

Yeah.

एक बच्चे के प्रति। Cheers.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा साथ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्म प्यार में होके उठते हो, परमात्म प्यार उठाता है दिनचर्या की आद, परमात्म प्यार होता है, प्यार नहीं होता आपको।

बन के

0: mi primer rodeo azul. To pa počne helivijati. Or abuki. Azul. Del que da bi me moti. Saman. रोस्ते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन पाप रोसे हुए को भी मनाते आते। कोई बात नहीं बच्चे, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत जाओ, बोल जाओ बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी। तो हर दिन चिड़िया किसके साथ है? बाप दादा के साथ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कर्नाटक में बाप दादा ने देखा है कि फर्स क्वालिटी बन सकते जितने फर्स क्वालिटी वाले तो चार स्थान और भी है, उसकी बात नहीं करते, लेकिन कर्नाटक के धरनी से फारिस बहुत निकल सकते। ताली नहीं सब बजाना, निकाल के दिखाना है। नजर पड़ती है लेकिन टीचर्स की नजर नहीं पड़ी। सुना पांडव, सुना पांडव, बहुत निकल सकते। बाप दादा को कोने कोने में याद आते कि पहले आप निकालो। दादियां आएंगी, कुछ वारस तैयार करो, फिर दादियों को बुलाओ। आएंगी जो प्लान बनाने चाहो वो बनाओ, लेकिन वारस निकल सको। Yes.

0: क्या समझते हो सकता है ना, हो सकता है। अच्छा 6 मास देखेंगे, 6 मास का टाइम दे रहे हैं। देखो कहाँ से बाइक ज्यादा निकल सकते हैं, कहाँ से बारिश ज्यादा निकल सकते हैं। होना ही है, जब समय समाप्त होगा तो सब निकलेंगे ना, निकलेंगे जरूर। सुना सिर्फ कांध नहीं लाना करके देखा ना, कर्नाटक वाले कांध बहुत अच्छा हिलाते, ऐसे ऐसे करते अच्छा कर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: दुख और अशांति चारों ओर, भिन्न भिन्न स्वरूप में पड़ रही

0: செய். வாணிக்கு சேவா Okay.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी भी दिल छोटे नहीं करना, बड़ी दिल बड़ा बाबा, छोटा बाबा है क्या, बड़े दिल बड़ा बाबा है ना, तो बच्चों की दिल सदा बड़ी। बाप दादा का स्लोगन है, बड़ी दिल सच्ची दिल साफ दिल हर मुराद हासिल। जो भी किचरा आवे ना, किचरे की दुनिया है ना, तो कभी वायुमंडल में किचरा उड़ के आ जाता है, लेकिन किचरा अपने पास नहीं रखो। जैसे इस दूर कमरे में सोते हो और किचरा हो जाए तो क्या होता है, सफाई नहीं करो, मच्छर होते हैं, बीमारियां होती है। तो ये भी अगर मन में कोई भी बात रख ली, निकाला नहीं, तो वो वृद्धि को पाती रहती। बस बाबा, मेरा बाबा हाजिर बाबा बंधा हुआ है। बच्चा, बाप का बच्चा, भगवान का बच्चा याद करे मेरा बाबा, और बाबा हाजिर नहीं हो, ये हो नहीं सकता। आपके पास बाप को बांधने की रस्सी है,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Jag blir ett och gott.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हर एक वर्गीकरण से ऐसी

0: Mr. Kaparbao, why you wonder me well? Waste a baby hair sleep mansa dwara sevaka
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Suck.

0: ऐसे देखो अंधकार है लेकिन स्विच अब ऑन करो रोशनी का तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता। अंधकार को मिटाने में अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे जब सामान के सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता तो किसी भी प्रकार का देवान भिन्न भिन्न प्रकार के देवान भी है और भिन्न भिन्न प्रकार के पाप ने स्वमान भी दिए। स्वमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना उसमें अंतर। इसलिए मेहनत करनी पड़ती। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान
1: जीवन का जो लक्ष्य है अनुभवी
0: नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संगम युग श्रेष्ठ है, वो ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन ये रहम दिल भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता, दुख में संसार को सुख में बना दे, ये उमंग नहीं आता। दुख देखने जाए थे दूसरों का, दुख देख करके भी आपके भाई सब सेवा में लग ले नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सी फॉर बनो, चाहे दृष्टि से चाहे अनुभूति से आत्मक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, छियासठ वर्ष समाप्त हो चुके हैं, छियासठ वर्ष ब्रह्मा बाप को अव्यक्त होते भी 33 वर्ष हो गए, ब्रह्मा बाप कब कब कहते भी है, कब बच्चे आएंगे दरवाजा खोलने के लिए, तो घर का दरवाजा साथ में खोलेंगे या पीछे पीछे आएंगे, इंतजार कर रहा तो सेवा में एडिशन करो, इससे बाप दादा गारंटी दे रहे हैं कि थोड़े समय में अगर इस विधि से सेवा की तो आपके पास क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी, बारिश क्वालिटी की बारिश पड़ेगी, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, कहना ही नहीं पड़ेगा अभी ये कार्य होना है, इसमें सहयोगी बनो, नहीं सहयोगी स्वयं ऑफर करने वाले होंगे, लेकिन साधारण कोर्स कराने की नहीं, वो बहुत करा लिए, वर्गीकरण के प्रोग्राम भी बहुत कर लिए, जो आए वो छाप लगे 9 लाख की छाप लग जाए। समझा क्या करना है?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: और आप सोचो, ब्रह्मांड आत्माओं की निजी संस्कार कौन से? क्रोध या सहन शक्ति कौन सा है? सहन शक्ति शांति ये है ना। तो अब गुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट के अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट के संस्कार बनाओ, मेरा निजी संस्कार कौन सा है ये सदा याद रखो। वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया, पाप के खजाने को अपना बनाओ, रावण की चीज को संभाल के रखा है और पाप की चीज को गुम कर देते हो क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है, पाप अच्छा लगता है, कहेंगे तो सभी पाप अच्छा लगता है, यही कह रहे हैं ना मन में। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होती है और फिर भी कहता रहता है बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा है। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे

0: ये तो अच्छा नहीं है। सब बाप चाहते हैं कि बराती बन के नहीं चलना। सजनी बन के चलना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Прости.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: खुश करने। एक ही बात का फॉलो किया तो सहज
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Peace.

सोचते हैं।

se chatear.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन परिवर्तन

Johnny.

Oh, what shit.

Sleep.

Papi. Salva.

0: शी मना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Και έτσι τρώμε. Σαντά. Τραβελ τάτσες. Το απορμέ. Καϊρά.

sexual.

0: και σε πιο. Σερίτ καϊσά, σερίτ. Λέγεν. Μαν.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: डबल फॉरेनर्स का फेवरेट शब्द है, बोलो कौन सा होगा? दो शब्द, और है भी इंग्लिश, कंपेनियन और कंपनी। पसंद है डबल फॉरेनर्स? पसंद है ये दोनों? एक हाथ उठाओ अगर पसंद है तो, एक हाथ उठाओ। अच्छा, भारत वालों को पसंद है? पसंद है, पसंद। पीछे वालों को पसंद है? पसंद है। अच्छा, कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है।

बच्चों को रिवाइज़।

Yes, sir.

Radio Menace.

Casa.

Sadio que

Samantha.

Vegas.

siehst nicht. Campanio.

Fireworks are finished.

Sati.

Exacto.

видел. Oh.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी भी कमजोरी आ जाए, आने नहीं देना, गेट बंद। गेट तो पता है ना, बंद करो, डबल बंद, डबल ताला लगाना। आजकल सिंगल ताला नहीं चलता। एक याद का, एक मन को सेवा में बिजी रखना।

connection.

0: अपने घर में इंद्रियों की दरबार लगाए। आर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं। आर्डर में चलो
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वारिस की भाषा तो समझते हैं, समझते हैं ना, जो से मन से सहयोग से सबसे नंबर वन हो और हर कार्य में हर समय एवरेडियो इसको कहा जाता है वारस। समय बुलावा आवे उस समय हाजिर हो जाए, इसको कहा जाता है वार्स क्वालिटी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अच्छा लगता है वो मंग है, लेकिन बातें छोटी छोटी बातें रुकावट डालती थी। अभी इसको मिटाने की कोशिश करूं, सोचते भी हो आगे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाती। अभी तक के रिजल्ट में जो सोचते it

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

किसी भी परिस्थिति में स्थिति पर स्थित रहे।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उनको ये लक्षण दिखाई से परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप की कौन थे, कौन है वो बच्चों
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप लोग छोड़ने में तो जय भाई जय बहने, जो बीने में थे विशेष परिवार निर्विघ्न हो, उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले बाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के प्रति भी करते हो, लेकिन खास परिवार के उन्नति के लिए और यज्ञ के कारोबार आगे आगे बढ़ते जाए, गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए, उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना। कोई भी सरकमटेंस वो सभी के योग से, सभी के समय देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प हो तभी हो।
2: यूथ विंग के लिए भी 1 करोड़ की एप्लीकेशन दिया हुआ है।
1: अच्छा है, बड़ी दिल रखो, आता जाएगा, सोचेंगे ना ये करूं नहीं करूं नहीं करूं करूं, मैं टाइम नहीं दे। आजकल समय है, अगर आप सभी शुभ भावना एक संकल्प रखो, होना ही है, हो सकता है। ये वरदान है, दिल बड़ी और कायदे सिर भी और दिल बड़ी भी, सिर्फ कायदा नहीं, दिल बड़ी रख करके फिर कायदा को। सभी का एक ही संकल्प हो, होना है, क्यों क्या नहीं होना ही। तो इस विधि से सब सहज होता है।
2: सोनीपत की भी 2 दिन के बाद डेट है कोर्ट में, भी हो जाए।
1: बस 10 मिनट आप सब निमित्त बने हुई आत्माओं को खास टाइम निर्विघ्न परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है, सहज हो जाएगा। अभी समय है, सहज हो सकता है, सिर्फ हो जाएगा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये भाषा नहीं कहना, ये ऐसा किया ना, तभी ऐसा करना पड़ा। सने की वजह थोड़ा थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा, बाबा शब्द नहीं बोलता, ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। ये नहीं, इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक बाप दादा से सभी रोहरियान में मेजॉरिटी कहते हैं बाबा। आकर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा? तो बाप दादा आपको कहते हैं कि ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेले बन की, करवेपन की। कब तक? बाप दादा का भी क्वेश्चन है, कब तक? आप उतर दो तो बाप दादा भी उतर देगा, कब तक विनाश होगा? क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी खोल सकते हैं इस सेकंड, लेकिन पहले राज करने वाले तो तैयार हो, अब से तैयारी करेंगे, तब समापति समय लाएंगे। किसी भी कमजोरी के बाद में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। ये कारण था ना, बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, प्यार है ना बच्चों से, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते, चाहे अमेरिका हो चाहे गुरुगा हो, सब दिखाई देते। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं, डालने की भाषा बहुत अच्छी है। ये कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, ऐसा किया ना, उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया, कारण को कारण ही बनने दिया, या कारण को निवारण में बदली किया। तो सभी पूछते हैं ना बाबा आपकी क्या आशा है, तो आज बाप दादा आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Just

Yes, sir.

0: जैसे अभी प्रकृति का अचानक बातों का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है। अभी नई नई बातें, अचानक अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उनको पता था कि कलम हो गई या नहीं? ऐसे कई एक्सीडेंट बिना स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गए। ऐसी समय में आप एवर रेडी है ये तो नहीं कहेंगे, पुरुषार्थ कर रहा हूं। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान संकल्प किया और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं। किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वभाव के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, बनना ही पड़ेगा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रति भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक तो को स्वमान के दृष्टि से देखो। हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा पहचाना तो है, मेरा पापा तो कहते हैं, और सम्मान में रहो और सम्मान दो। एकता लास्ट नंबर पे एक बाबा का बच्चा है, बाबा को सामने लाओ, उसके गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख के आए, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं, दाल रोटी संगठन अच्छा, ब्राह्मण जीवन किटराग से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा ले है, लेकिन अभी कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गया। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संगतोष में बहुत आती, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए, लेकिन संग का रंग बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संकटोष पे नहीं हो। आज होली है ना, तो जो संकटोष में आ जाते हैं टेम्पटेशन है, संकटोष पे नहीं हो। हद तक के प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं है, क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है कि कहता है जो होली का दिन है ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को साफ दिल मुराद हासिल करके देखो। दिल से सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगाते हैं ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते। तो आज होली मनाओ उल्टे रंग को, पाप के रंग में रंग लो। अच्छा आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी कह दिए तरस पड़ते।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ऐसे ही भारत में भी, विदेश में भी, कोई भी चाहे शाखाएं है, लेकिन संदेश जरूर पहुंचना चाहिए। अच्युत।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, करने की विशेषता होती है। तो
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Shit. संस्कार का वो मेरा है मेरा है किसका है ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार कहते हो मेरे संस्कार तो ये मेरा शब्द ये ही शुद्ध का तो नहीं है ना तो राज्य है अशुद्ध

dich bei dir. Mira Sanskar. ये सब रावण

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा के पास कोई कोई जाए छोटा सा नेकलेस बना के लाओ, जाए कंगन बना के लाओ, जाए बड़ा हार बना के लाओ, लेकिन लाना जरूर, हाथ खाली नहीं आना है ना हिम्मत, बनाएंगे ना बाप दादा तो कह रही चलो कंगनी लाओ लाओ, क्यों बहुत आत्माएं बहुत अंदर टेंशन से दुखी है, सिर्फ विचारों में हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, सर्वशक्तिमान हिम्मत दोनों को तो आ जाएंगे, जैसे किसको टांग नहीं होती है ना तो लकड़ी की टांग बना के दे देते हैं, चलता तो है ना, तो आप हिम्मत की टांग शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप, लेकिन अंदर बहुत बहुत दुखी, आप बहुत अच्छे समय पर बच्चा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कम से कम बाप दादा फिर भी मार्जिन देते कि इन 6 मास में जो बाप दादा ने से कम छे मास में अपने को जीवन मुक्त स्थिति के सा है।

0: Sampai jadi togir kayaknya. Capci pas kebat milde aiki. Toke si jadi oke. Tapi foto dekat.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

我教过

0: আমার পরিবারক দেখত লিয়া।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Eat.

Amen.

कुछ नहीं मां।

Krishna. Is it

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जय सुनबुके।

です。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये आशी है दृष्टि लेना बाबा से, समर्पित वालों की यही आशी है।
2: लेकिन दृष्टि लेनी है तो दृष्टि में बाप दादा को सदा रखना है, ऐसे ही दृष्टि नहीं लेनी है। दृष्टि लेना अर्थात दृष्टि में बाप को समान, ऐसी दृष्टि ले।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो समान बनना,

Moccasin Baba

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: नहीं समझती है कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है। सेवा ज्यादा चाहिए, पहले हमको चांस मिलना चाहिए। क्यों दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं? सेवा करना बहुत अच्छा है, क्यों कि अगर उत्ती फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। इसीलिए सेवा में मुद्दी बिजी रहे, ये साधन अच्छा है। जो सेवा आपको हलचल में लाए, मानो चांस नहीं मिला है। सेवा और मन सेवा का तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार या सर्कमस्टेंस अनुसार सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? ऐसी सेवा का, सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी के दुआओं से उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होगी। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई तो फीलिंग को पता है क्या कहते हैं, या क्या कहते हैं ब्राह्मण फीलिंग? बीमारी वाला क्या करता है? सो जाता है, न जाके खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। तो यहां भी क्या करते हैं, जब फीलिंग आती है ना तो क्या होता है, या खाना छोड़ेगा या रोज करके बैठ जाए।

स्वरूप हो, सच्ची सेवादारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होता है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से मेरा नाम आ जाएगा, मेरा फोटो आ जाएगा अखबार में, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, कई साधन ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मण ही बहुत आगे रखेंगे पूछेंगे। ये सब भाव स्वार्थी सेवा की नहीं, जो सच्चा सेवादारी है। आजकल के हिसाब से शिविरों की स्थापना के बाद दूसरी थी, लेकिन इस समय प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी, आप सेवा के बिचारी नहीं, आपके पास सेवा

Oh.

Suara

不治疗。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे और कर्म इंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे कभी कभी नहीं भी करते हैं।

चौक ही तो गए ने, हर कलप किए तभी गए ने, क्योंकि जैसे और कर्म इंद्रियों को मेरी कहते हो वैसे ही मन को भी मेरा कहते हो, मेरा कहना अर्थात मालिक बनो, मन में जो संकल्प करने जाओ जितना समय वो संकल्प करने जाओ वो बंधा हुआ है, क्योंकि मेरा तो बाप दादा इस

जाए।

0: कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं हो अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 वाड़ी, 10 मिनट का होमवर्क दिया, तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो, अगर 10 मिनट जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बाप दादा ये नहीं कहते अभी भी 10 मिनट करो, अच्छा नहीं हो सकता, जिसको हो सकता है वो करे, अगर नहीं हो सकता है 5 मिनट करो, 5 मिनट से 7 मिनट, 6 मिनट, जितना भी बढ़ा सको उतने ट्रायल करो। बाप दादा खुद ही कह रहे हैं इसमें ऐसी बात नहीं है, अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, जितना ज्यादा कर सको उतने आदत डालो, क्योंकि अभी भी बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सको। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल का पुरुषार्थ का जो प्राप्ति है आधा कल्प की, उस बहुत काल में फर्क पड़ जाए। कम समय देंगे, जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी है। अगर 5 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी, 5 तक भी छुट्टी, लेकिन अगर कोई भी समय हस्बैंड हो तो अच्छे, ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किराए देने पड़ेंगे। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार। ठीक है, मुश्किल लगता है ना, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई अर्जा नहीं है। और बाप को सुनाया ये बहुत अच्छा की, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा की कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना भरा सको उतना भरा। ठीक है, स्पष्ट हुआ? हुआ स्पष्ट? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने निशानी है हर एक बच्चे को कितने स्वमान दिए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Yeah.

0: Tibia, tibia. Body fat doesn't cuddle. अभी अपना इष्ट देव देविया दातापन का रूप इमर्ज करो देना है कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जय डॉलर को, जय पाउंड को, है तो पेपर ही। तो पेपर कहाँ तो चलेगा? सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? डाउन मनी डाउन तो होनी है, और आपकी मनी सबसे ज्यादा है मूल्यवान। जैसी शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओमंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कमाई का साधन कुछ नहीं था, एक तो समर्पण हुए ब्रह्मा बाप के साथ और अखबार में डाला रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होंगे, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा। आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे, टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। चमकते रहेंगे, कुछ भी हो जाए, दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे

0: così mi naisteri, si col che dire, mero a mahot valukasi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। सो सदा अच्छा होता है। मेरा स्वभाव, इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे वो याद करो। मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है? ये कौन बोलते हैं? आत्मा बोलती है मेरा संस्कार है। तो जब ये सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sick.

Sí.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब

0: और राज के अपने राज के इस समय बारे तो बार बार अपने स्वीटों और अपने स्वीट राज किस
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: गरम

0: Mouse. Gianni Mittbauer van der Man Pau automatically aa jata hai. To check karo kya jama hua.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है उसके दो शब्द ही है जो कामन शब्द है, मुश्किल भी नहीं है और सभी यूज़ भी।

0: कुछ विधि पहले भी बताई है, इसमें और मेरे को परिवर्तन करने याद है। देखो जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने मैं हुई आत्मा, मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलूं, मैं आत्मा, ये नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो, पहले को मेरा बाबा, पीछे मेरा ये रुमाल, मेरा साड़ी, मेरा ये। लेकिन पहले मेरा बाबा, मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आए, मैं शब्द बोला, आत्मा सामने है। ये नेचर और नेचुरल बनो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Jake.

अच्छा मैं आगे बढ़ सकता।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
0: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं थे। सुनाया एक एक संकल्प का, इक्कीस जन्म का कनेक्शन, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा इसी रखो। चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहो। अपना चार्ट बनाओ, हर समय बीच बीच में जो बाप दादा ने ड्रिल सुनाई है, बिन बिन जानते हो ना ड्रिल, शरीरी बनने की, अपने तीन स्वरूप स्मृति की ट्रेन जानते हो ना, जैसे बाप के तीन रूप है ऐसे आपके भी तीन रूप, ब्रह्मन फ्रिश्ता और देवता। इन तीन रूपों में ट्रिल द्वारा अपने मन को बिजी रख, इसलिए महामंत्र क्या है, मन मना भव।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को खुशी है कि हर बच्चा चाहे सिंधी है चाहे हिंदी है, लेकिन हर बच्चा खुश रहता है, मेजॉरिटी, ये देख के बाबा बहुत खुश होते। खुशी कभी नहीं कमाना, बात होती है, लेकिन बात हमारी खुशी क्यों ले जाए? खुशी हर एक की अपनी चीज है, वो कभी नहीं जानी चाहिए। बातें आती है, वो भी पेपर आता है, तो जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी है वो पेपर में सदा पास होते, उनके लिए पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। ही रेडी
2: ठीक है तो।
1: ऐसे रेडी रहने वाले की निशानी ये है कि उनके शिकिल पर सदा खुशी की लहर दिखाई देती। कितनी भी बातें हो जाए, क्योंकि डबल संबंध में रहते हैं, लौकिक में भी है, अलौकिक में भी, लेकिन जो सदा खुश रहते हैं वो आगे से आगे कदम बढ़ाता रहते, और बाप उन बच्चों को देख सूखम में उनके ऊपर दिल का प्यार अवश्य होता है, जो उनों को भी महसूस होता है बाबा का प्यार मेरे से। ऐसे दिल खुश बच्चे बहुत है और सदा ही खुश रहेंगे, जो नहीं भी है तो भी सदा खुश रहेंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है, बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है, यहाँ ये टीवी तो सिर्फ पैर का शिकल दिखाती है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है, जब मन का टीवी देख तो खुश हो जाते हैं, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे जो आपका एक गीत है ना, शक्तियां आ गई। सब शिव की शक्तियां है, पांडव भी शक्ति, छोटे छोटे खेल बाल बंद करो, अपमान परस्त स्थिति को इमर्ज करो। बाप दादा सभी बच्चों को इस समय सितारे देख रहे हैं, कोई भी बात आवे और ये स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन।
0: सुनते

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जितना प्यार है ना उतना साथ में, प्यार भी चाहिए शक्ति भी चाहिए। अभी शक्ति को बढ़ो, वायुमंडल बनाओ। एक तो किस सहयोगी बन, हर एक अपने अपने स्थान पर रहते हैं, स्थान को शक्तिशाली बनाओ, साथियों को शक्तिशाली बनाओ। तो क्या करेंगे अभी, नवीनता करेंगे ना। जब मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना। हर एक अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो, संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, अमृत वेले बाप दादा देखते हैं, संकल्प अच्छे करते हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। लेकिन जब कर्म योगी बनते हो संबंध संपर्क में आते हो उसमें फर्क हो जाता। कर्म योगी की स्थिति उसमें अटेंशन ज्यादा चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहते, एक शब्द है सफल करो, सफल बनो, जो भी खजाने सफल करना है, सफल

0: सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असफल करता है तो बोल द्वारा शिक्षा द्वारा नहीं, अपने शुभ भावना शुभ
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: स्थिति को सोचने को फिनिश करो, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। वो स्थिति को नीचे ऊपर करते हैं। समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अपने अपने वर्ग के अच्छे अच्छे

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा, रुए गुलाब। सीरियस हो के नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं। मुस्कुरा के बोलो। मुस्कुराने का स्टॉक है, खत्म तो नहीं हो गया। मुस्कुराया हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है, जोश वाला चेहरा दूसरा देख के ही हट जाना चाहता है। और मुस्कुराए हुए चेहरे के नजदीक जाने जाएंगे तो आपको अभी का मुस्कुराता हुआ चेहरे का फोटो निकाल के देवे। वो फोटो अपने साथ रखेंगे या कागज का रखेंगे या दिल का।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चों का बाप दादा मानक के संकल्प रीड करते हैं, कई बच्चे समय अनुसार सरकमटेंस अनुसार समझा अच्छा।

Jag kostar nog dig med det så bjärde. Jag

समझते हैं मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है मेरा कम है, ऐसे समझते हैं। हर एक यही कहता है ना, मेरा प्यार है, मेरा प्यार है। है ना ऐसे पांडव है, हर एक कहेगा मेरा बाबा, ये नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, पापा कहेंगे, कहेंगे नहीं। मेरा पापा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाओ। क्या कहते हैं, ऐसा काम को चलाना था ना, इसीलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ, करना नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ा, तो कर लिया। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना, पाप को भी बहुत री जाते हैं, गलती करते हैं ना। फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें, बाबा आप तो रहम दिलो ना, आप तो किमिया की सागर हो ना, बाप को भी याद कराती है, तो आप कौन हो? आपने कहा है ना, मेरे को सुना के खत्म कर दो। सुस्ता से सुना के कदम, एक अखियर पका करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिजाते बहुत है, आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं, आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना, बड़े चतुराई करते। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है के नहीं करना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: दादी कहती थी मेरी ये अभी तक भी दिल है कि हर एक मधुबन वाला चाहे पुरुषार्थ में कोई भी कमी अभी रह गई है उसका तो पुरुषार्थ करना है, लेकिन मैं एक बात चाहती हूँ मधुबन वालों से। क्या चाहती हूँ? एक मधुबन वासी पाप समान बन जाए। वैसे तो सभी को बनना है, लेकिन मधुबन विशेष है। मधुबन वाले को दादी से प्यार था, ये दादी कहती थी, मुझे पता है। तो प्यार के रिटर्न में मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मम्मा ने लक्ष्य रखा, पापा ने कहा, मम्मा ने किया, ये तो मधुबन वाले जानते। ऐसे अमृत वेले से लेके रात तक हर एक मधुबन वाले अगर बाबा के साथ मेरे से भी प्यार है, दादियों से भी प्यार है, तो जैसे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yes.

Шатера. Дельсипела. Санейка. Шаптакон Саникла. It's...

Сейчас проптяут я.

Fit.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर Yes, sir.

Avertí de vas. Bacho, ¿qué? Okay.

Jesse, Mom, Joe Kelly.

Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट मणियों को

पानी की चमक से चारों

Shh.

संतुष्ट आत्मा। मैं संतुष्टता का नेचर

Stay.

そっとした。キステティ、バレステティケオバル、サダビデイ、バレステティ。

कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर Yeah.

Is

குறிப்பதல் தான்.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रही है कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है, इसलिए सभी बच्चों को अभी सर्प पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई है। तीव्र पुरुषार्थ कोई

0: yo sé cara dos rinishanie divar por sharatki sada nirman kaje
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।